0: नहीं वो
1: ओके मैं ये भी बिना मीनिंगलेस ही अजकल जो नाम आप मंडे गल करा हूँ इतने ये बहुत वधिया टॉपिक आ नाले मैं अपना ना दसूंगा थोड़ा बहुत शुक्रिया थैंक यू सर मैं नहीं दसना मैं मजाक कर रहा सो 905-673-33 मैंने मैसेज आए बाई जी होना नाले तो कहते राहुल प्रभाकर जी होना नंबर दो राहुल प्रभाकर का नंबर बिल्कुल जी बाई जी सेंड कर दें थोड़ा और दूजा आया कहते कहते बाई जी कितने एरोप्लेन तो नहीं बैठे सो मैं बहुत सारे मैसेज आते रहते बाई जी होना मैं माफ करना रणजीत बाई जी थोड़ा ना नहीं एरोप्लेन च नहीं बैठे बाई जी बैठा गए कभी 8 साल हो गए बैठे ओके गुरजीत सूरी जी का भी कॉल आ गई है सो गल्लां बातां चल रही 905-673-33-37 नाल दी नाल थानू हुण मैसेज दईए कि अजय मुखिया नहीं सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा सिंगर ऐसा राइटर जिन्हें ना दुनिया लिया कि सारे मतलब की सी ना उन्होंने होर नज़रिए ना वेखन लग गए गुमनाम थोड़ा सिद्धू मूसे नूं लैके की नज़रिया सी
2: मैनू काफ़ी हद तक वधिया लगता नॉट लाइक के उहदा जी कह दी आपां गीतां तां चलो उहदे पसंद हैगी हैगी बट आपदी लाइफ दी जर्नी दे दौरान
1: मैनू लगता कि जदों बड़ी छोटी उम्र बड़ियां मंजलां सर करनियां सीगियां पर कई बार कई लोग जिहड़े ज्यौंदे जी काम नहीं कर पाउंदे वो बंदा दुनिया च ना वैसे तो है साडे सारिआं च बहुत घट ऐसे लैजेंड्स होए आ जिन्हां दे शो बणे आ होलोग्राम
2: हाँ जी
1: टुपाक
2: माइकल
1: ते हुण तीजे नंबर ते सिद्धू मूसेवाला
2: सिद्धू मूसेवाला इक साहब ना
1: बहुत वड्डी गल आ
2: जावे हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है मैनू लगता
1: सो इस हिस्ट्री का जो तुसी हिस्सा बनना चाहते हो और उत्थे कला सिद्धू मूसेवाले का होलोग्राम नहीं चलना उत्थे नाल दी नाल गुलाब सिद्धू पर कुछ कुछ ना कुछ सरप्राइज़ ने थोड़े वास्ते जेडे सरप्राइज़ तुसी 9 अक्टूबर नू टिकटा जे नहीं लईआं ticketmaster.co तो जाके टिकटा लै लो बहुत लिमिट जे बाकी रेडियो डान वालों थोड़ी असी हेल्प कर सकते हैं
2: फीसां फूसां बचाउणियां
1: बिल्कुल थोड़ी सेविंग करा सकते हैं रेडियो साडे कोल कुछ टिकटां पईआं ने स्पैशल प्राइजेस दे सानू कॉल कर लियो 437-800-0001 870-0001 ओके सो गलबात करे साइन टू गॉड टूर सिद्धू मूसेवाले दे नाल नाल होर एक मेरी गरंटी आ कि तुसी इंजॉय बहुत करना तुसी अपने उस लैजेंड नूं दोबारा वेखना दोबारा सुनना सब तो वड्डी गल कि तुसी ना हसदे जाओगे तो बाहर आउंदिआं तुहाडी अखां दे विच अथरू होणगे मेरा तुहाडे नाल वादा आ बहुत इमोशनल होने वाला इस ये जिहड़ा शो आ
2: सब तो पहला तो मैं प्लैटिनम वालिआं दा थैंक यू करना चाहुंदा क्योंकि मेरा परसनली सुपना सीगा
1: जी
2: सिद्धू दा शो लाइव देखना क्योंकि ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ
1: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਐਸੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਐਸੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ
2: ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਬਟ ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ
1: ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਅਰੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ सो हिस्टरी क्रिएट होने जा रही है उस हिस्टरी का तुसी हिस्सा बनना बाद विच ऐसे
2: मुन्ना दे फादर साहब दी वीडियो देख रहा सीगा
1: जी
2: बापू बलकौर सिंह होना दी ते वो कह रहे सीगे कि असी 295 गाना जेड़ा सीगा
1: उहदी वीडियो
2: उहदी वीडियो भी उत्थों ही शूट करनी आ तां हो सकदा आपां भी किते ना किते वीडियो च आ जाईए
1: हां सो बिल्कुल जी तुसी इस शो दे बारे भी कोई गलबात करनी है स्पॉन्सरशिप बारे या तुसी टिकट्स दे बारे तो 437-800-0001 तुसी मेरे नाल गलबात कर सकते हो साढ़े चैनल के उपर तुसी मैनूं डीएम कर सकते हो तो सारी जानकारी तुहानूं देंगे सो ए एक शो होना तो वध शिरकत मैं लगता कि वध भी सकती है अजे तक 12,000 का आइडिया आ सो हो सकता कि उत्थे 15 भी हो जाए 20 भी हो जाए सो एक वड्डा शो होने जा रहा ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।

ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया में अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रा जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कनाडा विच हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हैं हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा इसे लिए तुहाडे लिए है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नु सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच ते डिनर सारा कुछ है स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानु जरूर पसंद आएगी ते फिर देर किस गल दी अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छूमंतर हो जावेगी आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल स्पाइसेस स्नैक्स ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वरगा याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cash and carry 2023@gmail.com ते

0: आइए आइए, आपका स्वागत है मैं संसार में और दुनिया आत्मा परमात्मा खेलो दुनिया और बाहर की दुनिया के साथ।
1: आपको अपने आँखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेस, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
2: लो जी, तुम्हारी फिर अपना टेस्ट भी चल करने लगे हैं, दिल कर रहे हैं ताही का सिद्ध करने लगे हैं, जरा सुन के सोने।

ये संसार अपने जी जत आपे राखी जमे की ओ हटदार हर के चरण हृदय और तार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहा तिसकी सरणी उभरे भाई

सफल कर मस्तक धारिया। सोरठ महला पंजवां, जी अजंत सब किसके किए, सोई संत सहाए अपने से बकिया मेरा है पूरन भई बढ़ाई। पाठ हम पूरा मेरा दान, गुर पूरा पूरी सब राखी, होए सर्व दया रहा अन दिन नानक नाम ते आए। जिए प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए।

सुख किन मह उपजे, मन हुआ सदा सुखाला रहाओ। हर हर नाम दियो दास, तिन सगला रोग विदारो, अपनी कृपा धारी।

सबनी थाई रव्याप पाद जुगात जाता वन प्रताप गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाई मुठे।

प्रसन्न रुचणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजापती वेद माता जगन माता लोकेक्षिणी आदिशक्ति समुद्भूता जाही संपूर्ण जगत विश्वमंद्यं महाघोराहि मां शरणागतम् त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोऽस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राहि मां शरणागतम् चिदग्रीमण्डल सम्भूता राज्यवैभवकारिणी प्रकटीता साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मङ्गलानुशासनं तमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृती पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगे

विशुद्ध बुद्धिकारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपका लिए जो वीकेंड है, अभी सर्दी की शुरुआत हो गई है, थोड़ी थोड़ी ठंड, तो अब जब आप बाहर निकले तो थोड़े बहुत अपने आप को अच्छी तरह से ड्रेसअप करके निकले, तो इसी तरह ही हमें ठंड का अभ्यास होता है। लेकिन ये है कि वीकेंड में धूप खिली रहने वाली है, तो मौसम लॉन्ग वीकेंड, अगला जो वीकेंड है लॉन्ग वीकेंड है, तो उसमें थैंक्सगिविंग का लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। तो आपको अब इस हफ्ते आपके लिए आपने 2 अक्टूबर का दिन है, तो बड़े महान दिन है आज, महात्मा गांधी जी का उनको याद किया जाता है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, राष्ट्रपिता हैं। तो आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आपका बढ़िया सा मनोरंजन करते हैं। तो अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना है, या फिर आपने टीवी बढ़िया लेना है, अब महाउत्सव सूझना शुरू हो गया है, दिवाली आने वाली है, लोग आ रहे हैं, तो आपने अगर अपने घर में बढ़िया फ्रिज लेके आना है, बढ़िया फर्नीचर लेके आना है, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक पर जाइए और खूब वहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया स्पेशल्स मिलेंगी। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखो और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आज लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद किया जाता है, तो उन्होंने बहुत अपने देश के लिए, देश के नेता थे, और उनका जो उनको याद किया जाता है, उनकी ग्रेटनेस, उनकी सिंपल साधारण, इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो उन्होंने अपना जिंदगी को बड़ा सिंपल सा रखा हुआ था, तो बड़ा उन पे ऐसे नेता देश में हुए हैं, तो हमें जरूर उनका गर्व होता है जब भी उनका दिन आता है, तो हमें एकदम बहुत खुशी महसूस होती है। तो आइए आपको एक बढ़िया सा गीत भी सुनाते हैं। तो पहले अगर आप मूव होना चाहते हैं, तो एच के मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में आपकी मदद करते हैं मूव कराने के लिए, तो इसलिए फिर आपने अगर मूव होना है तो आप एच के मूवर्स को कॉल कीजिए। जी हाँ, एच के मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, और साथ ही आपको आपके लिए उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, तो बहुत बढ़िया आपके सामान को बड़ी हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो अगर आपने मूव होने हैं तो आप उनको कॉल करिए, 416-524-404 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी किस्म के भी, अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपने कोलिजन का काम करवाना है, तो आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो गौर रोड पे खुल चुके हैं। तो मास्टर कोलिजन डिपो पर आप, अगर मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हैं। तो सिरनी शक्कर पारे मक्खी बेसन पिस्ता बरसी

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 4% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस पर सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1150 416-213-1165।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लेट्स गो।
2: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए

जी आत्मा फिर आपका स्वागत है घर संसार में। तो इसी तरह हम उनका जो दिन है वो मनाएंगे। आप हमारे साथ बहुत जुड़े रहिएगा। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत भी सुनाएंगे। तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने किसी किस्म की भी आपके घर में फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर लेके आना है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए तो इंटर मॉडल एंड्रेपर रोड में मौजूदा दूसरी लोकेशन में गोल्फ में दूसरी लोकेशन गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कीजिए 416-524। उनका जो आपके लिए लोकेशंस हैं दोनों वहाँ पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 905-700-0045 पर आप कॉल कर सकते हैं। दिवाली से पहले ही आप बुक कर लीजिए और जो भी आपको सामान मंगवाना है तो वो आप पहले से ही ऑर्डर बुक कर दीजिए, चाहे नया टीवी हो या फिर बैकयार्ड में आपने बढ़िया फर्नीचर लेके रखना है तो आप कॉल कीजिएगा 905-700-0045। तो ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए खुशी खबर है कि वहाँ पे अब मास्टर कोलिजन डिपो खोल चुके हैं। आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है, आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं तो आप गोर रोड पे जाइएगा और मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाकर उनके बारे में और जानकारियाँ आप ले सकते हो। अगर आप थॉरल्ड में नियाग्रा फॉल के आसपास के इलाके में रहते हैं तो इलेक्शन आपके लिए 26 अक्टूबर को है। तो साद महमूद आगे आए हैं, वो कम्युनिटी की काफ़ी हर बहुत सालों से नियाग्रा इलाके में मदद करते आ रहे हैं। तो आप वोट डालनी है तो आपको ये सोचना पड़ता है कि हमारे लिए कम्युनिटी में इस तरह के जो काम है लोग करते हैं भलाई के तो वो कौन करता है, मदद के लिए कौन है। तो आप उनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। तो अपना हक है, आपका वोट जरूर डालिएगा।

जी हाँ, तो ये भूले बिसरे गीत है, एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद रखती हूँ आपको जरूर पसंद आ रहे हो, खास करके सुबह सुबह में जब आप इस तरह के गीत सुनते हो तो आपके लिए आपका जो सोल होती है वो बड़ी खुश हो जाती है, तो आपका दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। तो चलो इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप पूजा का सामान लेना है तो आप जानते हैं ये सजावट एंड पूजा हट। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो एचके मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो आप और जानकारी के लिए उनको कॉल कीजिएगा और ट्रक अपना बुक कर लीजिएगा, और बहुत सारी उनकी टीम्स हैं आपके सामान को बड़े हिफाजत से वो पहुंचाते हैं। तो आप 416-524-7004 पर आप कॉल कर सकते हैं, 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए एच के मूवर्स, बहुत बढ़िया सर्विस, बहुत क्वालिटी सर्विस है उनकी, तो आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो अब अगर आपने खाना ऑर्डर करना है, न्यू इंडिया स्वीट्स का रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट ब्रू ब्रिटानिया पे मौजूद है, तो वहाँ पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो लाइव कुकिंग करवानी है 905-814-1703-905-814-1703 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। और अपनी दिवाली के लिए अपनी खास प्रोग्राम करना है तो आप उनको बुक कर लीजिए, 905-814-1703, न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो आज ही पहुंचो बीबीटी रोकले फाटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लैके $1,00,000 तक, ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% ते शुरू। हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई वधिया डील लभ के देणगे। ते जे तुसी कोई भी किसी तरह दी भी जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवें टायर दी लोड़ है तो ओह वी मिलणगे, 4 टायर दा सैट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ आटो हैमिल्टन आओ सानू सिर्फ ए दसो मैं AM530 ते मीरा शर्मा तों तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेज ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सिद्धी बचत, तो फिर देर किस गल दी, आज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, कॉल करो 365-384-3840, दोबारा सुनो 365-384-3840, बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो अब अगर अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेके आना चाहते हो, अभी आपके लिए फेस्टिव सीजन है, तो आप आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, तो फिर नवरात्रे आएंगे, तो इस तरह से जो महाउत्सव सीजन है वो आपके लिए चलता रहेगा। अब आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया सा भूला बिसरा गीत है, तो वो भी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। आप बस जुड़े रहिएगा हमारे प्रोग्राम से, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

देखी चमेली आपकी, तो बड़ा प्यारा गीत है और मूवी भी देखने को मिले तो बहुत ही खूबसूरत मूवी में बड़ा बढ़िया तरीके से फिल्माया गया है ये गीत। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अब अगर आप अपने लिए किसी किस्म की भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेना है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा। महाउत्सव सीजन अभी शुरू हो चुका है तो आज आपके लिए बड़ा ही महान दिन है, 2 अक्टूबर का दिन है तो सभी जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये दिन। आपने बहुत सारा वीकेंड है अभी तो वीकेंड में सभी लोग महात्मा गांधी जी के बारे में जरूर कुछ ना कुछ मनाएंगे, किसी ना किसी ढंग से अपने अपने ढंग से सभी लोग इकट्ठे होते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी जो स्पीचेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो उनकी जिंदगी के बारे में बहुत बड़ी एग्जांपल है, नेशन फादर हैं। हमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लैके $1,00,000 तक, ते फाइनेंस दी चिंता ना करो। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल हन। जे तुसी हमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवें टायर दी लोड है तां ओह भी मिलणगे, 4 टायर दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू। हुण सुणो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जद तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हमिल्टन आओ सानू सिर्फ ये दसो मैं AM530 ते मीरा शर्मा तों तुहाडे बारे सुनिया है अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल प्राइस ते परचेस ते $500 ऑफ। जी हां, 500 दी सिद्धी बचत, तो फिर देर किस गल दी। अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हमिल्टन, कॉल करो 365-384-3840, दोबारा सुनो 365-384-3840, बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। अब आपके लिए बहुत बढ़िया, आपको अगर आपने पूजा का सामान लेना है, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं 8 अक्टूबर से, तो आप जरूर अगर आपको पूजा का कोई भी सामान चाहिए तो इंडिया सजावट पूजा हट, तो लीजिए सुनिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अगर आपके लिए अकाउंटिंग का अपना HST फाइल करना है तो गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिएगा 416-302-8835। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, ये भी लता जी और मुकेश जी का गाया।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर में। तो हमारी कोशिश है कि आपको महात्मा गांधी जी की स्पीच जो है उनकी थोड़ी सी आवाज हम किस्मत वाले हैं कि उनकी आवाज हमें ये जो थैंक्स टू सोशल मीडिया और ये जो चैनल्स बने हुए हैं वहाँ से हमको उनकी आवाज सुनने का मौका मिल रहा है। तो रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, लेकिन ये जो 2 अक्टूबर वाला दिन है ये बड़ा खास है, हिस्ट्री बनी है, ऐतिहासिक दिन है। दो लोगों के, हमारे भारत के जो खास लोग थे जिन्होंने बड़ा योगदान दिया।
1: An indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike power than I Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet, they know that there is a power that certainly rules. In my tour last year in Mysore, I met many poor villagers

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

गई बोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभे माया तारी नाम परयो भगत गोविंद का

जैसा बालक पाए सुपाई, लाख अपराध कमावे। कर उपदेश छिड़के बहु पाती, बहुड़ पिता गल लावे।

आपे सुने बेनते पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूक मन की चिंते हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख बसंते होए दयाल कृपाल प्रभु ठाकुर आपे सुने बेनते पूरा सतगुर मेल मिलावे

0: जन नानक सुख बसंते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभे माया धारी नाम परयो भगत गोविंद का ए राखो पैज तुम्हारी।
1: स्वागत जी प्रोग्राम पंजाबी लहरां रेडियो दे नाल तुसी ए सफर दे विच जुड़े हुए हो ते बहुत ही प्यारी जो सवेर है ते इस सवेर दा आगाज जो चंगा होया ते आउण वाला समा जो है ये भी बिल्कुल चंगा ही होवे परमात्मा अगे इहो अरदास करदे आ ते सवेरे सवेरे पहलां तां शुकराना बिल्कुल बनदा है नवां दिन जो चढ़िया नवां दिन सानूं देखण दा मौका मिलिया ते जिथे जो तंदुरुस्ती जो है जेकर परमात्मा ने परिवार दे विच बनाई है तो मेरे ख्याल इस तो वड्डा शुकराना तो फिर करन लई कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सो प्रोग्राम पंजाबी लहरां रेडियो ते जी अज ठंडा ठार जो मौसम सवेर वेले बिल्कुल है हुण अक्टूबर शुरू हो गया चलो सवेर वेले तो ठंड होनी बनती भी है 7 डिग्री इस वेले तापमान ने दिन भर अज जो बीते दिनां नालों थोड़ा ठंडा जरूर रहेगा हालांकि चलो निखरी हुई धुप होवेगी पर 16 डिग्री अज दे तापमान होने की उम्मीद है ते फिर देर राती चलो डबल डिजिट ही रहेंगे टेंपरेचर पर 11 डिग्री तक जाएंगे। सो जो पिछले हफ्ते भी लगता सी कि हुण ठंड आ जानी है अक्टूबर की शुरुआत है पर फिर भी चंगे मौसम रहे ते अज चलो थोड़ी जी ठंडक रहेगी पर उस तो बाद उम्मीद है कि हाले अगला हफ्ता भी 21 डिग्री टेंपरेचर जो ने ये सानू जरूर दिखाएगा। सो जो अक्टूबर का महीना है जो ये फॉल असी कहने कि शुरुआत हुण फॉल दी हो गई है जो पतझड़ आ गया तो उस दे विच ये जो निघी ठंडक है ये दिने जरूर थानू महसूस होंगी रहनी है क्योंकि 21 डिग्री तापमान जो ने इस पूरे हफ्ते भी बिल्कुल बने रहनगे जी। सो जी दिन चढ़ चुका है पर सूरज चढ़न दे विच हले समा है 7:18 ते अज दा जो सनराइज होना सो समा चलो हौली हौली इस दे विच अगे हुंदा जांदा है ते 6:55 ते शामी जो अज दा जो सनसैट होना है सो ये तय होया परमात्मा वल्लों ते ये पूरा दिन जो है सानू मिलिया जिथे छुट्टी बच्चियां लई चलो एक राहत भरी हुंदी है कि चलो जो 5 दिन स्कूल दे लाए ने हुण 2 दिन आराम भी बच्चे करनगे पर चलो आराम बच्चियां दा हुंदा है मापियां नूं कित्थे आराम है ते जी थोड़ा दिन जो है वह सफल रहे ते आओ सरवण करदे आ एक शब्द प्रोग्राम पंजाबी लहरां रेडियो ते तुसी बने होए हो जी ते बिल्कुल बने रहना।

दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम तिहाया गए मसक्कत का।

0: سوگاز جس پرم پر پرمیشور دے نام اٹھ آسنا جس دے نام اٹھ آسنا آگاز دنیا دے ہر چیدہ دن خوشکوار چردی کلا والا نر پاؤ نرویر رہے گا مسکرات چیرے دے سارے گی روشنی رستے دکھاوے گی گاز اس پرم پر پرمیشور ہمیشہ اس نو یاد کر دے ہوئے آج دی خوبصورت سویر کے ایک سرمائی سویر زندگی دے براغ ورگی علا دین دے چراغ ورگی جمیں سنگنے بوڑاں دی چھان جمیں مو وچ ڈبی ماں ठंड वर्गी खंड वर्गी दोस्ती दे सच वर्गी खुशी ना परे गच वर्गी मेरी सत श्री अकाल एक बार फिर से प्रवान करोंगे। इस समय पियर्सन एयरपोर्ट का ट्रैक 6 जिथे एयर इंडिया रोजाना दी रूटीन दे विच लैंड कर चुकी है और जो नवे जहाज एयर इंडिया ने चलाए ने ते तुसी इन्हां दी अगर टिकट्स बुक करनी चाहते हो एयर इंडिया दी स्पैशली कोमल नूं कॉल करो ऑल लिंक ट्रैवल तो। इस समय इंडिया जाने की टिकट कन्फर्म करके देखो 2800-3200 के नेड़े लोग मंगन लगे हुए हैं। कोमल कहते हैं कि 1700 तो लैके $2200 के इंडिया आन जान करना विद दो टैची यानी कि एक टैची लेके जाना है विद टू तो तुसी ऑल लिंक ट्रैवल दे कोमल 905-239-7711 थोड़े सफर नूं खूबसूरत बनाना सुहाना बनाना 905-239-7711 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਗਿਆ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ।
0: हाँ जी। और ना पंकज जी ऐसे ना जब सुबह सुबह निकलते थे जब हम लुधियाना में रहते थे तो ना सुबह निकल के क्या दिल करता था कि चलो आज ऋषि के ढाबे पे परौंठे खाते हैं।
1: हाँ जी, जी, जी, जी।
0: या दिल करता था राम जी हलवाई के भटूरे खाते हैं।
1: हाँ जी, जी, जी, जी।
0: या पन्ना लाल हलवाई के जो है दही भल्ले खाते हैं, है ना।
1: जी, जी,
0: सो
1: जी,
0: वो सब चीजें मिस करते थे जब नए आए थे यहाँ। पंजाबी जी बोला मैं। $15-16 खर्च के तुसी निकलो ते तुसी कहो स्वाद आ गया, रज आ गया, पूरा दिन नहीं कुछ खाना। ते ऐसा टेस्ट दारा सिंह परौंठे दा जिहड़ा कि चार टॉपिंग ना तैयार हुंदा पीजे वांगू। दारा सिंह परौंठा पीजे वांगू परौंठा तैयार होवे ते उच पाया होवे तुहाडा जिहड़े उहनां दे अपणियां गोभी पाती इहनां ने विच उहदे आलू पाते विच प्याज पाते विच होर कई चीज़ां मैनूं तां हुण पता नहीं की पाउंदे ने। मतलब चार टॉपिंग वांगू इह पीजा तैयार हुंदा ते इह दारा सिंह दा नां तां सी। इह महाबली परौंठा पूरे थाल दे विच आउंदा एडा वड्डा परौंठा जिहड़ी प्लेट देणगे ना प्लेट दे नुक्करां तक बणिया हुंदा वड्डा। मतलब परौंठी नहीं परौंठा दारा सिंह परौंठा तुसी ट्राई करना हैगा ते तुसी नाल अज ट्राई करना हैगा। असी लाइव ऑन लोकेशन ते पहुंचे रेडियो वाज दी टीम तवा किचन नूं मार्केटिंग करदी है। असी अज पहुंचे हुए हां इत्थे लाइव ऑन लोकेशन दे उत्ते और नाल दी नाल दारा सिंह परौंठे दे तुहानूं फुट लोंग अमृतसरी कुलचा फुट लोंग तां कहिंदे आ कुलची नहीं कुलचा हैगा अमृतसरी कुलचा दोनों हाथ जोड़ के जिवें आपां प्रसाद लैंदे आ इदां बुक्कल भर के ना विच इह पनीर ते आलू ते होर जिहड़ियां दी मिक्सिंग ने उह पाउंदे ने। इह तां क्वांटिटी दी गल करदा टेस्ट ते बाद चो आना। ते इसी तरह इन्हां दा तीसरा मशहूर कोम्बो पैकेज सवेर दे समय उह हैगा भटूरा पहाड़ गंज के छोले भटूरे। भाई जी ऑयल तो बिना ਤੁਸੀਂ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਇਹ ਚਟਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਮਿੱਠੀ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੌਂਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਗਾਇਆ ਅੱਜ ਦੋ ਜਣੇ $15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਔਡਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਔਡਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਔਡਰ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ $15 'ਚ ਦੋ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੱਪ ਚਾਹ ਅਤੇ ਦੋ ਪਲੇਟ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਲੇਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ $15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋ ਜਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਪੰਕਜ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾ ਦੋ ਸਾਰਾ।
1: जी जी सर। सर जैसे आपने सही कहा सर, यहाँ पे पहुंचे लाइव ऑन लोकेशन और माहौल इतना बढ़िया है सर, आज धूप इतनी अच्छी निकली है और तवा किचन के अंदर मैं भी फिलहाल खड़ा हूँ, तो यहाँ पे अंदर पार्ट लगा हुआ है और इतनी बढ़िया डेकोरेशन करी है, तो जो आज डाइनिंग के लिए आएंगे, टेकआउट के लिए आएंगे, उनके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना भी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इतनी बढ़िया एम्बियंस और इतना आज खूबसूरत दिन है, उसका आज मजा भी कुछ और है सर। जैसे आप कह रहे थे ना कि पुराने जमा, मतलब पहले हम जाते थे ढाबा खाने का, खाना खाने के लिए, यहाँ पे परांठे खा लिए, बिल्कुल वैसे ही मुझे आज फील आया है यहाँ पे तवा किचन में। आज सारे पहुंची है जी जल्दी जल्दी, 50 सनीवेल गेट पे पहुंची है जी तवा किचन, नंबर है जी 9057901699। तो जल्दी पहुंची है और आपका जो ऑर्डर है आप प्री बुक भी कर सकते हो, जाके आपको ज्यादा वेटिंग ना पड़े। तो सारे जने आइए, परांठे खाइए, अमृतसरी कुलचा खाइए और छोले भटूरे खाइए, उसके साथ चाय, कॉम्बो आपको $15 में मिलेगा जी। तो आप पहुंचना कहाँ पे, 50 सनीवेल गेट तवा किचन।
0: और आज जी ना देना किसी तंदूरी परौंठे जो किसी ने ट्राई करने हैं, तंदूरी परौंठे जी, तंदूरी परौंठा ट्राई करो, कोई भी परौंठा $7-8 तो वध नहीं हुंदा, ते कोई भी परौंठा कॉम्बो तो बिना नहीं हुंदा, जिवें उहदे विच थोड़ा दही ते अचार नाल आउंदा। ते तुसी जिहड़ा हैगा अज 50 सनीवेल गेट दे उत्ते पहुंचो और तुसी इहनां दीआं चाह पीओ, बाद च फिर थोड़ा जिहा मिठा मंगाओ, गजरेला खा के देखियो, इहनां दा खीर बनी हुई है, खीर इहनां दी आपदी, तुसी खीर ट्राई करनी है, जांदे होए अचार लैके जायो, ओलियां दा अचार पिया ना को, बड़ा जबरदस्त अचार है, होम मेड अचार बनाउंदे ने इह, अचार खुद तुसी वर्तमान पाए देखोगे, घरां च पाए हुंदे सी, दादी दे बना के रखे हुए, सो होम मेड अचार तुसी चको उत्थों, ते नाल तुसी अपना फूड चको, ते नाल तुसी पहुंचो TAWA किचन, तवा किचन दे उत्ते, और 50 सनीवेल गेट 905-790-1699 ते हुणे कॉल कर दो 9057901699 TAWA किचन। ते पंकज जी दोबारा फिर मिलते हैं, इनको अगले शॉट में बताते हैं कि ग्रेवीज में अगर ट्राई करना है, लंच भी करना है तो वो क्या खा सकते हैं। सो तवा किचन 905-790-1699 ते दारा सिंह परौड़ा छा गया, तवा किचन ते 905-790-1699 ते कॉल कर।
2: 6'2" लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
3: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा, चैंपियन इन पराठा मार्केट,
4: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 9054512600, 9054526200।
5: मैनू पता है क्यों, मैंने तवा किचन की केटरिंग खादी सी, सच्ची कहो तो फूड इन्ना टेस्टी, अनलिमिटेड फूड, इन्ना फूड के मैं खांदे खांदे थक गई पर फूड नहीं मुक्या।
3: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बुवेदा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 9057901699 TAWA kitchen.ca।
2: 6'2" लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
3: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा, चैंपियन इन पराठा मार्केट,
4: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 9054512600, 905-400।

0: तो तुसी मास्टर योर एग्जाम कंपनी नु कॉल करो, आपका नंबर बोल दीजिए तीन बार।
1: हाँ जी, तो जो मास्टर एग्जाम का नंबर है वो है 437-376-5656, 437-376-5656।
0: 437-376-5656 कोई भी लाइसेंस लेना कर लो, दुनिया मुठ्ठी में इन्होंने कॉन्टैक्ट कर सकते हो 437-376-5656। बहुत शुक्रिया आपका,
1: थैंक यू अमन जी।
0: 437-376-5656 ते हिंदी पंजाबी अंग्रेजी च गल कर सकते हो। 437-376-5656। ब्रिजी कैसे आप?
2: चढ़दे कले जी, ऑलवेज।
0: ब्रिजी जड़ा हैगा मिट्टी दे पुत्र, मिट्टी च पैर लाउंदा हुंदा। मैं मिट्टी, मेरी जात भी मिट्टी, मेरे गल मिट्टी दा बाणा जार मिट्टी ने, मिट्टी खाधी साडे रो रो पैण मकाना मकाना पैंदियां ने जदों मिट्टी जमदी है, यानी कि आपां हुंने आ। ब्रिजी
2: जी,
0: आप आयुर्वेदिक तरीके से मालिश करते हो, लोगों की तकलीफें दूर कर देते हो।
2: जरूर
0: है जी
2: जी,
0: जो की तकलीफें दूर कर देते हो।
2: जरूर
0: है जी
2: जी,
0: जो लोग सो नहीं पा रहे लंबे टाइम से वो सो जाते हैं आपके पास
2: 100%।
0: जो लोग एक्टिव नहीं वो एक्टिव हो जाते हैं
2: जी, एनर्जी,
0: ब्लड प्रेशर सेट कर देते हो आप।
2: करेंगे जी।
0: कितने तरह की मालिश करते हो आप
2: जी?

0: Talk530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही
2: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता
5: रेडियो आवाज रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200
6: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जांदी है पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस तुहानू डेट नू प्रॉपरली असेस करन मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200.
7: Your

चले हम फैक्टर से डालते रिवाज में हम दीप सिंह बैनीपाल एक बार फिर तो खुशी और गम तो उपर उठ के जड़ा है कि आनंद पिया मेरी माए सतगुर में पाया सतगुर की कृपा के नाल अज का खूबसूरत दिन कि जिथे सुरमई सवेर जिंदगी बराक वर्गी अलादीन चिराग वर्गी जिमें संघड़े बोड़ा की छां जिमें मूँह में डुबी मां ठंड वर्गी खंड वर्गी दोस्ती दे सच वर्गी खुशी न परे गच वर्गी मेरी सत श्री अकाल एक बार फिर तो प्रवान करो।

0: सरनाल स्वयं ब्रिजी ने ब्रिजी कैसे हैं आप
1: ऑलवेज
0: पूरे जोश के साथ
1: ग्रेट
0: ग्रेट और ब्रिजी जड़ा हैगा एक आयुर्वेदिक जड़ा हैगा तरीके नाल थोड़ी नींद नु वधाउणा ते जथे कहंदा बारिशा के नींद ना देखे बिस्तरा भुख ना देखे मांस मौत ना देखे उम्र नु इश्क ना देखे जात बाबा बारिशा साडा बुजुर्ग जड़ा होया जिने पंजाबी बोली नु बड़ा कुछ दित्ता हैगा गायब हो गए वारिस होणे बुले होने जब बाबा बुले शाह है जी बुले शाह का एक मणका मौला ही मौला करता 24,000 नमाज इश्क दी तू पंज कीतिया पढ़ता बुले शाह का एक मणका मौला ही मौला करता एक एक मणके च नमाजा पढ़ता मैं तू पंज पढ़ के काजी कादिया जड़िया गल्ला करता बाबा बुले शाह कहते बाबा रब न पाना हस के कहते मोटे तत्थ रख के कहते रब का की पाना इधरों चकिया इधर लाना तू ही तो रब का कमलिया अपने आप टटोल सो अंदर की यात्रा होंगी आयुर्वेदिक तरीके दे ब्रिजी करते हैं ब्रिजी
1: जी।
0: आप जब हमें अंदर लेके जाते हैं मैंने चार विजिट आपके साथ की पांच फर्स्ट विजिट में मेरे बॉडी के उत्ते गठा बनी हुई सी ब्लड सर्कुलेशन वॉज नॉट एक्यूरेट वो क्या था जो आप बोलते थे नॉट्स बनी
1: नॉट्स है जी नॉट्स
0: नॉट क्यों बनती है
1: बॉडी है ना जी बॉडी में नॉट्स कभी कभी आए
0: उनका बहा सही नहीं है ठीक है नंबर टू ए पोटली ना मालिश करता जिन्नी सोजिशा जी गर्माहट है वह खत्म कर दिया नंबर तीन जिन्हें नींद नहीं आती ये थर्ड आई होंगी अपने नक् के उपर अखा के विचकार वो शिरोदरा नाल तेल पाँदा है वो तेल पा के अपनी तीसरी अख नूं सुख चैन दिंदा है सो बॉडी का कोई भी कंसर्न रक्त पान तो लैके कोई भी प्रॉब्लम इको सल्यूशन इको ना इको थां ब्रिजी की धर्मशाला
1: जी
0: ब्रिज की धर्मशाला जी है मार्टिन गुरुद्वारा के कोला हरिदा केरला आयुर्वेदा के नाते
1: जी
0: आज आपके पास अपॉइंटमेंट्स हैं
1: अवेलेबल है जी
0: जब लेडीज एंड जेंट्स लिमिटेड
1: नहीं नहीं
0: बंदा डर जाता है नहीं लोग भागते जाते हैं कि लिमिटेड है ले लें है ना ब्रिजी को अपॉइंटमेंट अवेलेबल है
1: जी
0: लेडी और कोई भी मेल और फीमेल दोनों कॉल करो दोनों वास्ते अलग अलग सर्विस देने वाले लोग ने फीमेल जी है औरत है औरतों सर्विस देंगे वो जे कि एक्सपर्ट लोग ने तेल बड़े खास ने इन्हों इन्हों को पंचकर्मा तो लैके शिरोधारा तो लैके आपको एक लेडी ने कॉल किया था उसने द्वारा हमें कॉल नहीं किया मैंने आपको बोला था उसको बोला हमें कॉल करे
1: नहीं जी मैं फोन किया उसको
0: अच्छा ठीक है सो ब्रिजी का नंबर क्या है
1: 6476491369
0: पंजाबी में
1: 6476193
0: फिर द्वारा
1: 6476193
0: सो ब्रिजी पंजाबी बन गया जिवें पंकज पंजाबी बन गया ऐसे ब्रिजी पंजाबी भी बन गया पंजाबी दी मालिश कर करके पंजाबियों वर्गा बन गया
1: जी
0: कैसे लगे पंजाबी लोग आपको
1: बहुत बहुत बहुत बढ़िया
0: बढ़िया ना
1: या
0: बस इन्हें आप ठीक हो जाने जी चिगली निंदा जिन्हें को काम किया उन्होंने गाला कढ़ी जानिया जिसे किसी ने पार्टनरशिप कर लिया नर्क हो गया जिन्हें ना किसी ने रिश्ता पै गया वो माड़े हो गए जिन्हें किसी ने मदद करती वो ही मगर पै गए मतलब ये चीजें इन्हें ठीक हो जाना
1: जी
0: सच्ची कहना रब वर्गे लोग ने इन्नी दिलदारी गुरु नानक पातशाह ने पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत कहने वाले गुरु पातशाह जिन्होंने धरती की उत्पत्ति की गल की है तेरा फोन बज रहा ब्रिजी उठा लेना बाद में पंजाबी नहीं जे थोड़ा फोन नहीं मिलता टैक्सट मैसेज करनी है लिमिटेड ये को अपॉइंटमेंट ने $55 लेंदा पिछले 3 साल तो इन्हें रेट बताया जिम्मे मैं नहीं बताया तो जो आया सी मैंने कहा जिन्ने पैसे दे होंगे उन्हें दे दी जिन्हें नहीं देंदे ना दी तो बहुत काम किया इस आदमी ने सेवा भी लोगों की बहुत हुई 647 619 1369 कोई बीमार है रियल बीमार है मतलब चुस्त बंदा ना कोई कॉल करे चलाक बंदा ना कॉल करे जो मैं कहना धौन चकीला जिन्हें फसया मैंने कॉल ना करे हंकार जिसे कर दिन चाहना वो तो मेरे ना गले ना करे क्योंकि मेरी उन्होंने एनर्जी मैच नहीं होनी 647 619 1369 से कॉल करो तुसी एक मशीन च बिठाउंदा मशीन का क्या नाम है
1: स्वेदना
0: स्वेदना स्वेदना चूस जाती है पसीने ना तुहानू
1: आयुर्वेदिक डिटॉक्स
0: मशीन है वाला दो ही मेरे वाल देखन लागे स्वेदना कोई लेडी नहीं है स्वेदना मशीन है जी 647
2: क्लियर करता सर
0: हां मैं ताही कहना कान जो परनो गए सर स्वेदना पसीना कढ़ देंदे बॉडी च स्वेदना 6476191369 अंडर 100 PH एंड टॉप दे होके निकलो अंदर ਕਿਹੜਾ ਬੜੋ ਅੰਦਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਓ
2: ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ
0: ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ
2: ਠੀਕ
0: ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੂ ਕਿੱਥੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕੜਾਹਟ ਆ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 647 619 1369 ਬਹੁਤ
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ
0: ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਜਾਨ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ 6476191369 647 1369 ਬ੍ਰਿਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਐਕਸੈਸ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਪੌਂਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਸ਼ਵਾਨੂ ਬਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇ ਹੋਲਡ ਪੇ ਹੈ। ਸ਼ਵਾਨੂ ਬਈਆ ਹੋਲਡ ਰੱਖੀਏ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਮੇ ਆਪਸੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਵੀ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ।

0: जी आओ 170 गिल्डन रोड यूनिवर्स 17, 170 गिल्डन रोड यूनिवर्स 17, टेलीफोन नंबर है 6473021322, 347-302-1322, 13-22, जेलो टायर सेंटर।
1: डरेवरी सूट कर दिया जटानू।
2: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Sure, 10 to sham 7 baje tak on dine-in and takeouts. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday, manpasand kulcha plate. Tuesday, chana bhatura. Wednesday, lajawab veg thali. Thursday, yummy haka thali. Friday, maza lavo saag makki di roti da. A yummy deals is Simply Indian. This sariya hi locations stay. Dining, takeout and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab, Simply Indian.
0: सस्ती ग्रोसरी और हरियां ताजियां सब्जियां लई शहर दे विच इको इक नाम सत शिखामा तो इंडियन फ्रूट लैंड ते नाल ही है नदी तंदूरी ग्रिल बारले पासे जिथो तुहानू बणिया बणिया हर फूड मिलदा है नाल दी नाल रा मीट भी और मैरिनेट कीता मीट भी तुसीं लिया सकदे हो अपने नेड़ली लोकेशन ते आओ 45 डस्ट ड्राइव फिफ्टन फेंडर वे ब्रैम्पटन 9985 मक्वीन ड्राइव ब्रैम्पटन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन 33 फार्ली ड्राइव गोल्फ which are 600 Haskell Road, Cambridge. Namikuni branch, 25 Central Wood Parkway, Kennedy to Central Wood Parkway, Kennedy Aao, Hariya Taniya Sabhiya, or the Sassi Grocery Vase Poncho, Indian Fruit Land Day.
3: Hello AM 530 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ
0: ਟੁਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-564-6444

first year second mortgage or refinance करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015।

0: एक चक्कर लगाओ।
1: ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो बहुत निघा स्वागत है तुहाडे अपने प्रोग्राम दे विच। उम्मीद है कि तुसी प्रोग्राम पूरा एंजॉय कर रहे हो। कुछ समय दा टाइम मेरे कोल हो रहा है तुहाडे नाल, ते उम्मीद है कि तुसी सारे प्रोग्राम दे नाल नाल अपने गाने नू एंजॉय कर रहे होवोंगे। कोशिश मेरी यही हुंदी है कि मैं सारे गाने सुना के जावां, बट अज मेरे ख्याल च सारे लगणे नहीं। बट एनीवेज नेक्स्ट फरमाइशी गाना तुसी सोनी पाबला जी दी आवाज़ च एंजॉय करो, ते सुंदरो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।

0: नर्सिंग होम्स विच भी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तो नहीं पर काम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट सिक्के बंद काम दी गारंटी 647-515-8000।
1: Solution to promote your business. Desh Pardesh Prime Time Radio and TV. Tohade ang sang 24 ghante satto din. Hun tak Desh Pardesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chuke hai te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi vi apne business vich vada karan vaste Desh Pardesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2000.

आई कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा। खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें। तीखे और तेज मसाले हर फीके पन को मिटा दें। लाहौरी गोट एंड चिकन कड़ाही, शिनवारी चिकन एंड गोट कड़ाही, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर। 416-526-6800 416-526-6800

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रेड्स फर्नीचर दा ए मैसेज जरा

0: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत. कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600. वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5000 जॉब्स कंप्लीटेड, 16 इंस्टॉलर्स टीम कवर अक्रॉस ओंटारियो, मोर देन 9% इन होम स्टार्स लास्ट मेनी इयर्स. विंडोज एंड डोर मैन्युफैक्चरर, नॉट डीलर्स. यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 और 416-674-7770.
1: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 905 457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.

0: ओपन माइक कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा। खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें, तीखे और तेज मसाले हर फीकेपन को मिटा दें। लाहौरी गोट एंड चिकन कड़ाही, शिनवारी चिकन एंड गोट कड़ाही, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर। 416-526-6800 416-526-6800
1: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा

अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत। कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600। वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5000 जॉब्स कंप्लीटेड, 16 इंस्टॉलर्स टीम कवर अक्रॉस ओंटारियो, मोर देन 9% इन होम स्टार्स लास्ट मेनी ईयर्स। विंडोज एंड डोर मैन्युफैक्चरर, नॉट डीलर्स। यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 और 416-674-7770।

0: ਇਹ ਹਿੱਲੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 7741 9000। ਬਹੁਤ
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। और बिल्कुल
2: स्टार्स, यहाँ हम करेंगे सितारों की भाषा को समझने की कोशिश, क्योंकि आसमान में चमकते सितारे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों के संकेत, ज्योतिष साइंस के गहरे रहस्य और उनके हमारे जीवन, करियर, सोच, रिश्तों, फैसलों और भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव। तो आइए ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलते हैं, क्योंकि कभी कभी जवाब जमीन पर नहीं सितारों में छुपे होते हैं, और हर सितारा एक कहानी कहता है, और शायद उनमें से एक कहानी आपकी भी हो। तो चलें सितारों से जुड़िए और खुद को समझिए।
1: थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीक तो फिर तो गलबात होगी। आफ्टर द शो माई नंबर इज 4169106000। हैव अ गुड वीकेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।
2: चांदनी बियॉन्ड स्टार्स, यहाँ हम करेंगे सितारों की भाषा को समझने की कोशिश, क्योंकि आसमान में चमकते सितारे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों के संकेत, ज्योतिष साइंस के गहरे रहस्य और उनके हमारे जीवन, करियर, सोच, रिश्तों

0: www.cbc.ca.
1: सांझा नूं जिवें परिंदे अपने घर मुड़ आउंदे ने,
2: शिफ्टां ते जद वतनां तों दूर याद अपने फेर तों आउंदे ने।
1: कोई है जो करदा है तुहाडी मां बोली विच तुहाडे दिल दीआं गल्लां,
2: पंजाबी गीतां नाल रौनकां लगा के तुहाडे कम दीआं गल्लां,
1: वखरा ढंग वखरा रंग,
2: रेडियो जीदा वखरा अंदाज,
1: सुचज्जी जीवन शैली दी गल करदा तुहाडा अपना रेडियो, रेडियो अंदाज,
2: रेडियो अंदाज।
1: सुनो अपनी होस्ट परम कौर दिना, नंबर टू कॉल 647-234-6000।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए हैं जी शनिवार की शाम की महफल दे विच एक बार फिर तो ट्यून इन कर चुके हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नूं सारे परिवारां नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नूं खुशामदीद एंड स्वागतम

0: राम जी, मेरा बिजनेस नहीं है चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देव तातले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
2: होल्डर गुड्डा सिंह रिपोर्टिंग सर। अंग्रेजी की लत तोड़नी लाई।
3: पता की मैं भी सच्ची बहुत दुखी हां इहदे तों।
2: बंदा पुछे भी तू शर्मा जे तेनू नहीं आउंदी तू ना बोल।
3: एग्जैक्टली
2: कुत्ते नूं भौंकी जानी अंग्रेजी नाले आउंदी नहीं।
3: पता की गंडा सिंह जी
2: मेरे मुंह गाला निकल गया बिना गड्डी। फिर मैं भी नहीं मन नूं समझा गंडा सिंह इत्थे महकां लगियां हुंदियां ते फिर महकां नाल आवाज चले जांदी अग्गे।
3: माइक
2: ओ मैका।
3: हां जी हां जी, पता की गंडा सिंह जी, तुसी ही तो हो जेड़े अक्लमंद हो, मतलब इत्थे आके मैनूं मिलदे हो।
2: ए तां है,
3: सारा दिन सोचो मैं इहदे नाल किद्दां बैठी
2: हां। मैं दरअसल अज इस करके आया, मेरे को टाइम ही नहीं जानदा। मैनूं इह दस पी डेट की हुंदी है?
3: डेट मतलब की किसे गोरी नाल चल रहे हो?
2: पता कोई नहीं, मैनूं आंदी आई वांट टू गो टू डेट।
3: अच्छा,
2: ते मैं क्या भी यार डेट मतलब हुण मैं कैलेंडर लेके जा बड़िया। नाराजी होगी पीपल फलांटी लेटर पटरों ने मैनू क्या।
3: अच्छा,
2: मैं क्या भी यार बाला गर्म होने तो पहला मैं पूछा ही।
3: डेट ते मतलब के जिवें बार उहदे नाल चाह पानी ते कॉफी पीन जिवें चाहिदा।
2: सीधा कह नी मैं फिल्म वेखनी अज, डेट ते जाण दा मतलब हां।
3: ओनू पता नहीं सी ना भी थोनू डेट नहीं मतलब पता।
2: अच्छा कोई चक्कर, पता की मैं तुहानू सुधी गल, मैं बिना पंजाब ही फोन लाया। मैं कहा यार गोरी डेट डेट करी जांदी ओहो जे मेरा यार हुशंदा।
3: हां
2: कहंदा गंडा सिंह तू पंगा पा ले, लगदा गोरी ते लगदा तेनू कचहरी च तरीक तरूक ते भुगतण नू खड़न फिरदी
3: है। मेरे रब्बा,
4: तुसीं अपने बिजनेस नू प्रमोट करना चाहुंदे हो? सफलता दी कुंजी साडे कोल है। तुसीं मॉन्ट्रियल, टोरंटो या वैंकूवर अंदर अपने बिजनेस दा संदेश देकर कामयाबी दी मंजिल वल जल्दी ही वध सकदे हो। स्पेशल पैकेज दा फायदा उठाउण लई तुसीं साडे हेड आफिस नाल संपर्क करो 416-677-0609 416-677-0609।
5: नहीं करला चुगलियां तो
3: तू काका मसा ही बचिया। मैं
5: गंडा सिंह की आ गया, मतलब किड्डी तो खुश होनी उधर बेशर्म जिया बंदा वो।
3: हेलो
5: और की
3: अकलना बोली पंजाब पुलिस आओ।
5: पंजाब पुलिस हुंदा सी हुण नहीं हैगा।
3: जिद्दा भी है
5: जदों पंजाब पुलिस हुंदा ना बंदा उदों को सारे डरदे है।
3: अच्छा,
5: जदों पंजाब पुलिस छड दंदा ना फिर वो आप ही मल्ला चेंज कर लेंदा।
3: भाई साहब पर उन्हें तेरे छड्डन लगे ने नहीं सोचना भी किथे पैंदियां भी।
5: नहीं वो तो हुण मैं देखूंगा कि हुण वो पंजाब पुलिस च है नहीं।
3: हेलो,
5: हां जी,
3: ए की रावे
5: नवा कर तू मेनू।
3: हेलो,
5: गल नहीं बात नहीं, मैं जिहड़ी गल करना है वो कर। I want to change my job and give me the options you have in your pocket.
3: तू एमए कर, तू ना जेड़े human props नहीं होंदे
5: जी,
3: वो बन जा।
5: Human prop मतलब?
3: हाँ,
5: वो किंदे?
3: Human props होंदे ने जिवें कि ना जेड़े luxury houses होंदे ने
5: जी,
3: उना दे विच उना नू मतलब जिद्दां let's say मैं एक human prop हां तू एक human prop हां ना, उना नू as a family वो लोग रहंदे ने। ठीक है, उना दे उपर पर शर्तां होंदियां ने। पहली शर्त ए होंदी है कि जदों उस घर नू कोई खरीदण दे लई आ गया उन्होंने उसे वेले घर खाली करना पेगा, छड़ना पेगा। दूजी शर्त है कि घर जेड़ा इस तरह होना चाहिए जिम्मे ओ कोई भी ना रहा हो, मतलब किसी चीज कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तीजी चीज है जेडे कह लो शीशे वगैरह एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए ने। चौथी चीज आ कि बेड जेडे एदा होने चाहिए ने जिम्मे ओ कदी कोई पहला सुता ही ना हो, मतलब बिलकुल नवा लगना चाहिए घर। हाँ
5: नहीं एक मिनट,
3: हाँ
5: ये मतलब उथे घर च रहन दे लई सोखो आ गया सजा है?
3: चंगे
5: काम दस मेनू।
3: चल ठीक है, बात

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली हुई लग गई
0: हाँ
1: तू एवे कर जेड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंदे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हाँ
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या क्या चीज चाहिए है फार्मस चाहिए बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना
0: यार किद्दां दी मां हो गई जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दई ते ओ मेरे गा ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले एक मिनट हेलो एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया
1: केड़ा ऑर्गेनाइजर
0: जिने बच्चा ऑर्गेनाइज कीता पहले
1: एक्सक्यूज मी
0: पापा जी
1: थोड़ा ध्यान ना
0: हो वही मैं कह रहा ना
1: पापा जी कितना का काम करदे हुंदे ने दसी जरा मेनू
0: नहीं भावे कुछ भी दे दा ए थोड़ा
1: लेडीज ऑलवेज बच्चे भी देखण काम भी देखण घर भी देखण डॉलर भी देखण सारा कुछ देखण है हेलो
0: मैडम तू ना बीबी दी साइड ना जा मेरे वाले प्रोफेशन ते आ
1: ਤੇ
0: ਇਹ ਕੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ
1: ਹੈਲੋ
0: ਨਾਲੇ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਕੋ ਚੀਜ਼ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਪਾੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਫੇਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
1: ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
2: रेडियो अपने कारोबार दी ऐड चला भाई स्पेशल पैकेज ने उन्हां कोल फोन कर 416-677-0609 416-677-0609

0: गल दस, तू अपनी पहली गर्लफ्रेंड क्यों छड्डी?
1: ओया पागल सीगी।
0: क्यों?
1: ओनू मैं फोन करना, उन्हें फोन चुकने दी बजाय बादरी ही ने रिंगटोन ते नची जाना।